0: This is Radio Dhor Barahi, 103.8 MHz.
1: Station 1. Studio Talchit.
2: Aile, diuso ko ek bajyo.
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना संग साठ फेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301
4: Cameras, standby. Reload music.
5: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: Bye, Sunday Unwacha.
1: एपी स्टोर दुलेगौड़ा सृजना टोल बनकेवा चोक देखि भित्रपट्टी कवासी जाने बाटो में आफ्नै भवन में खुलेको छ नि।
2: यहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्री एउटै

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टेशन 1 स्टुडियो साइड
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301